मोहम्मद अर्श पे चुके, खुदाए पाक कहता है तुम्हारा घर है, अपने घर में शर्माया नहीं करते। मोहम्मद अर्श पे चुके खुदा

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूले सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काफी सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदामात आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: आज भी इसमें गोल डेली लो फिट रहो।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
4: बंद करो ना ढक्कन।
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: This program is brought to you by
1: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
5: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
8: And
9: Tufaan hai
7: HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरजीह देते हैं। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
13: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
14: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
15: हमारी जिम्मेदारी है।
16: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365
11: FM247365 FM100 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
17: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: अकाउंट जहां खाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
3: And
4: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
3: And
5: Sweepy Clean, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
3: And
6: तूफान है
0: and HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: HBO Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद, जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.

0: आज भी इस्तगोल डेली लो फिट रहो
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
2: का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश
4: नाजरीन ताज़ातरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू
5: बंद करो ना ढक्कन
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
2: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाए ईवी बाइक आईफोन और आईपैड जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
8: This program is brought to you by
2: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
8: And
9: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
6: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
8: And
10: Toofan hai
1: And HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM247365.
13: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
5: Sweepy Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
6: Tufaan hai.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab,

0: FM 100 traffic update.
1: पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराओं पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कुछ जगहों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, जिसमें फौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से वो ट्रैफिक जो चौरंगी से गोदाम चौरंगी और वहां से लुक चौरंगी की जानिब जा रहा है, दरमियाने रास्ते पर ट्रैफिक का इस वक्त कुछ दबाव है, लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए। इसके साथ साथ मंजिल पंप से कायदाबाद और वहां से मरी सिटी की जाने माने वाले ट्रैक पर भी ट्रैफिक का दबाव है। गरीबाबाद से वो ट्रैफिक जो ईसा नगरी से इस वक्त आ रहा है स्क्वायर की जानिब, उस पर भी इस वक्त ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है, लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पे पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100. Come on, baby, do it.

0: 8:30 AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: This program is brought to you by
3: Hire ka naya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
8: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
6: Sweep V clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
9: toofan hai.
0: And HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: What a session! It's time for a break now.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें, सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
0: This program is brought to you by
5: Higher का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: एंड
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: एंड
8: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: खातिनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जाहिर कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना माना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक गांव, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: Like us on facebook.com/fm247365
11: fm247365.
12: Back to back, back to back, only music, no RJ talk.
13: Only music, no RJ talk.
12: This is FM.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहाँ HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM 247365.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सर दर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें।
6: اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ڈی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ڈی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ڈی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 247-365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: in the rhythm of life. Rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 1100. The music plays on.
1: FM 100's time check. It's 12 noon.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
4: बंद करो ना ढक्कन.
5: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100 31 साल. FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: dedication for maximum music.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
5: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर रابطہ करें।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
8: FM247365 Keep it locked to 100 FM।
9: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज़ ना निकाले। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।

FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. आप सुन रहे हैं FM 100 पर जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
7: facebook.com/fm247365 FM 247 365।
0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

0: पैसे अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: हायर कन्या।
1: आप सुन रहे हैं FM

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: हायर कन नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसे अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसे अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: FM247365 FM247365

0: Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: facebook.com/FM247365
2: FM247365.
5: Keep it locked to 100 FM.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: facebook.com/FM247365
0: FM247365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
6: प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ हिना नकवी, आप सुन रहे हैं रेडियो पॉडकास्ट विद हिना नकवी। FM 100 के स्टूडियो से कराची के लाइव हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड क्रिकेट स्टार शोएब मोहम्मद। हम बातें कर रहे हैं बहुत मजेदार किस्म की, शोएब से उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर रहे हैं और प्रोफेशनल भी। अच्छा, बड़े बड़े नामों के साथ आपने खेला, जैसे इमरान खान थे, जावेद मियांदाद थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने बड़े? उस वक्त तो आप जूनियर थे ना, तो उस वक्त कैसा फील करते थे? अपने आप को मनवाना बड़ा मुश्किल काम होता है ना।
7: जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, बड़े जो लेजेंड्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड जो हैं, इनके साथ खेलने का मौका मिला और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। टू स्टार्ट विद जहीर अब्बास साहब की कैप्टनसी में मैं साथ खेला, तो और फिर उसके बाद ऑफकोर्स सारे, और फिर PIA की तरफ से जब मैं खेल रहा था तो उसमें माजिद खान साहब अच्छा। भी थे, आसिफ इकबाल साहब भी खेले हैं। और मैं इनफैक्ट मेरा जब पहला जो फर्स्ट क्लास मैच था जिसमें मेरी पहले और लास्ट जो मैं फर्स्ट क्लास मैच खेला उसमें भी सेंचुरी मेरी रही है अल्लाह की मेहरबानी से। तो पहला जब मैं खेल रहा था तो उसमें सीनियर जो प्लेयर्स जो थे उसमें शफकत राणा साहब खेल रहे थे वो मैच, सलाउद्दीन अहमद साहब, हाँ वो उनके मेरे ख्याल लास्ट मैचेस थे और मेरा वो फर्स्ट मैच था, वो बिल्कुल फर्स्ट मैच था मेरा, तो उस तरह से और पहले मैच में वहाँ सेंचुरी, तो मेरा मतलब है कि वहाँ बल्कि इनफैक्ट उससे भी पहले मैं जब पीआईए के मैचेस देखने या पार्क क्रिसेंट से डैडी क्लब क्रिकेट भी कभी कभार खेलते थे तो मैं उनके साथ जाता था, तो बड़ा सब मुझे बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे, मस्ती मजाक भी करते थे, जोक्स क्रैक करते थे उसमें बहुत से, फहीम साहब थे, मसूद उल हसन और मसूद चेक, इस तरह के बहुत से नाम जो उस वक्त के जो नॉन क्रिकेटर्स थे, आसिफ मसूद साहब, तो ये सबों के साथ मेरा इंटरेक्शन बड़ा फ्रेंडली, मैं छोटा था बहुत, मेरे ख्याल 10-12 साल का होऊंगा, तो लेकिन ये के इंटरेक्शन मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे, मैं उनको देखने भी जाता था, सीखता भी था और एक इंस्पिरेशन भी मिल रही होती थी, तो बड़ा अच्छा वो टाइम था। लेकिन ये कि कैप्टनसी ऑफकोर्स इमरान खान साहब के अंडर भी, जावेद मियां दार साहब, तो ये मुश्ताक मोहम्मद साहब सबसे बड़ी बात, उनके अंडर में पीआई में खेला,
6: घर आके भी डांटते होंगे
7: तो ये सारे लोगों के साथ जब आप अगर खेले हो और इन एंड आउट आप रहे हो साथ, तो उसमें आपका बड़ा जबरदस्त किस्म का लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि इन लोगों ने पूरी दुनिया की क्रिकेट के अंदर अपना वो कहते हैं लोहा मनाना जो है अपने माइंडसेट से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से, अपना माइंडसेट से मैचेस जीतना, प्लेयरों को आउट करवाना, और तो ये बड़ा जबरदस्त एक मैं फिर अगेन वही वर्ड यूज करूंगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि मैं उस एरा में आया कि जब ये टॉप मोस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, फिर घर पे हनीफ मोहम्मद साहब हिमसेल्फ, और फिर और इन प्लेयरों के साथ खेल के बड़ा होना, परफॉर्मेंसेस देना, तो वो बड़ा अच्छा टाइम था, सीखने को भी मिलता था। और फिर बाद में फिर मैंने जब पीआईए गोल्ड्स की टीम बनी 2010 में, तो उसमें हमने 13 प्लेयर्स चूज किए पाकिस्तान से, और उसमें से 8 प्लेयर पाकिस्तान अंडर 19 विद इन 2 इयर्स खेले, जब वो नॉन एंटिटी थे जिस वक्त हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद 2 साल में वो पाकिस्तान अंडर 19 बोर्ड ने सेलेक्ट किया, हमने तो कोई पार्ट नहीं था बोर्ड में उस वक्त, तो लेकिन बोर्ड ने उन प्लेयरों को सेलेक्ट किया, तो ये बड़ा जबरदस्त
6: अचीवमेंट है।
7: तो ये वो सीखने से लोगों के साथ इस तरह के आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है बिटवीन द टू, के यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स कि ये प्लेयर की ये क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है, ही इज द वन, जिसमें इमाम उल हक थे और मीर हमजा भी पाकिस्तान के लिए खेले, और भी 4-5 प्लेयर पाकिस्तान के लिए भी खेले बाद में, तो बड़ा अच्छा ये टाइम था, अच्छा जो सीखने को भी मिला।
6: अच्छा वर्ल्ड कप भी आप,
7: मैं एक में था 87 वाले में, जिसके अंदर हम जब ऑस्ट्रेलिया से वो सेमीफाइनल जब हारे, उससे पहले जो एटमॉस्फेयर था ना इतना बबली और वाइब्रेंट था,
6: अच्छा।
7: कि टीम में भी ये फील थी कि ये पाकिस्तान इतनी ऑन द हाइस थी कि भाई ये टूर्नामेंट तो पाकिस्तान ही जीतेगा, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हम सब प्लेयरों का इतना जबरदस्त था, तो लेकिन ये इट वाज प्रोबेबली नॉट टू बी, और वो जो ऑस्ट्रेलिया से हम मैच आ रहे, लेकिन जब हम ग्राउंड से जा रहे थे होटल की लॉबी में भी तक भी पहुंचे तो लोगों ने खुल के तालियां बजाई कि हम वी प्लेड द टूर्नामेंट ब्यूटीफुली और इट लुक्ड अ विनिंग टीम, मैच कभी ऊपर नीचे हो जाता है
6: लेकिन ये
7: जी। फिर उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया की टीम वहां सेमीफाइनल हार गई, तो उसमें चांसेस ये थे कि हम इंडिया पाकिस्तान का एक इंडिया में एक मैच कराया जाए, और उसमें एक तरह से वो फाइनल से तो बाहर हो गए थे दोनों, कि फिर भी कौन जीतता अगर ये दोनों सामने आते, लेकिन वो फिर लास्ट हम लोग फिर इंडिया वहाँ कलकत्ता गए, फाइनल भी देखा हमने, लेकिन फिर लास्ट मिनट में उन्होंने डिसाइड किया कि अगर इंडिया हार गया है ये मैच तो बहुत ज्यादा राइट्स हो सकते हैं या कुछ मसले हो जाएंगे, तो फिर इट नेवर हैपेंड।
6: सही। अच्छा आपके डबल सेंचुरी 202 ریکارڈ 203 ٹوائس ہے تو یہ کیسے کریز پہ اتنی دیر جمع رہنا بڑا مشکل کام ہے نا.
7: نہیں وہ
6: اسٹریٹجیز پلان
7: نہیں وہ اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو آکوپائی دا کریز فار لانگر.
6: ٹھیک ہے
7: اب یہ آرٹ آف بیٹنگ میں یہ فائنل پوائنٹس آف دا گیم آتے ہیں کہ بھائی آپ کون سے مومنٹ ہیں کہ جس میں آپ ایکسلریٹ کریں, کس وقت آپ لوور گیئر کے اوپر گاڑی کو چلانا شروع کریں. اب 25 پہ 4 آؤٹ ہیں اور میں شارٹ مار کے میں بھی آؤٹ ہو کے آ جاؤں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. تو وہ کریز کو آکوپائی کریں گے تو آپ کے رنس تو آٹومیٹکلی رنس تو آنے ہی ہوتے آپ, لیکن وکٹ پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. دیٹ ہیلپ دا ٹیم اٹ سیلف اور وہ اس

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.

0: आज भी स्पिगोल डेली लो फिट रहो।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
5: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: This program is brought to you by
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL।
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
4: And sweepy clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.

0: much, Mr. Gold. Daily low, fit raho.
1: Nazreen, tazatarin khabar se aapko aagah karenge ki pure shehar mein phail chuki hai aapke toilet ki badbuu.
2: Band karo na dhakkan.
3: Sweep be clean. Kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBO Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: डेली लो फिट रहो
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
2: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
4: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम रखा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है
6: समझे आप लाख को से तीन बार मौत देखो
7: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ कब्र से चला गया मैं नहीं बचा
8: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया सानू मारिया सानू कुटिया
5: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें
9: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा
5: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्भाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम मुलगीर क्रैकडाउन जारी एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज गिरफ्तारियां जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे ख्वाब जरूर देखें बेहतर रास्ता चुने हुकूमत पाकिस्तान
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
10: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स जैस कैश इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाइल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी गुमराह को या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें फौरन अपने तमाम ऑन सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाइल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाइल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदामात आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology, food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
5: sweep be clean. करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
6: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
9: Evening 5 time.

0: it's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
3: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: and
4: toofan hai har jeet ki pehchan hai
0: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
5: 100 FM
6: Hi friends I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
7: 100 100

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur Bhul Ja,
1: Phoenix Laga aur Bhul Ja.
0: And
2: Sweep E Clean, kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: आज भी इस गोल डेली लो फिट रहो।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसे अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसे अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: तूफान है।
8: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
11: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by Tufaan Hai. नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365 Evening Drive Time.

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. This program was brought to you by Tufaan Hai.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
0: 100 FM।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: FM 24/7/365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: Manshiyat, ek lamhe ki galti puri zindagi ki tabahi. Ice, heroin, chairs ya kisi bhi kisam ki manshiyat, ye waqti khushi nahi, mustaqil aziyat hai. ये जिस्म को कमजोर करती हैं, ज़हन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: The voice of the nation. FM 100. 24 hours a day.
1: The station for the nation. FM 100.
0: KHI space your text message. Send it to 3636.
2: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो.

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: 100 FM.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैज कैश.
2: This program is brought to you by
6: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
2: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
7: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों. ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. Evening drive time. Food.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैज कैश।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
9: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
11: हमारी जिम्मेदारी है।
12: खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: facebook.com/fm247365
14: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

खुद से भी मिला करें, सर उठा के चला करें। खुदा के तरीके हम नहीं समझ सकते, हम उससे क्या गिला करें। दुनिया संग दिल बनती मेरी दुश्मन, हम कम अज कम खुद से ही सुला करें। कम बोला करें, ज्यादा सुना करें, रब देता है माफी फिर गुना करें। ये ताकत ठिकाने बदल सकती, कलम की ताकत आफत भी पलट देती। लिखारी जान लेवा हूँ पर लिखाई ही रोजा जीने का सबक देती, वरना जिंदगी मौके तो कम देती। महफिलों में तो रौनक भी हमसे थी, इधर हसल करते करते पूरा दिन गया। उर्दू रैप मैं, उर्दू रैप मेरे दिन क्या। फैक्स नहीं, मुझे गालिब जैसा लिखने का फैज नहीं। वो हबीब है मेरे तो मुझसे दूर क्यों।

दिल को बिल बोर्ड पे अब दिखे शक्ल इनको, मेरा बैंक बैलेंस लगता था पिन कोड, अब सफर देख सिर्फ सिफर गिन तू। Hey, I belong here, जाने का मूड नहीं है, हेडलाइनें सुन तेरी कोई न्यूज नहीं है, क्या वो सुनते पर करते महसूस नहीं है, वादे टूटे पर टूटे हैं सूल नहीं है।

जैसे ही लगा सुल गए कटे मेरे पर फिर भी जाने कैसे उड़ते मुझे उड़ने दे टूटे जो दिल वो आज जुड़ने दे इन आंखों को खुशियों से भरने दे अल्फाज मेरे दिल में उतरने दे मंजिल तो खुश हो ठहरने दे ये घर मेरा जड़ को ना मरने दे उभरेंगे सूरज ये ढलने दे वक्त लगे खुद को बदलने में।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
1: 100 FM।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय JazzCash।
3: This program is brought to you by
4: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
5: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
0: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सरदर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
6: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की सूखे से मुतालिक کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی اور اس متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

0: This program was brought to you by
1: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: 100 FM.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
0: FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: 100 FM।
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन।

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकिम। आइए इस खतरे के खिलाफ मुख्तलि नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मिट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

के सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबी पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। मैसेजेस आपके आना शुरू हो चुके हैं मगर मैं सोच रहा हूँ कि कोई सवाल फ्लोट करूं जनरल नॉलेज का या फिर आपके मैसेजेस की जानब जाऊं। चले एक सवाल फ्लोट कर ही देता हूं। आजकल मैं आप लोगों से पुरानी पुरानी चीजें बहुत पूछ रहा हूं, नई नई तो आपको पता ही है। यानी कि पुराना नाम मुल्कों का मैं आपसे काफी पूछ चुका हूं। जापान का भी पूछा था, इराक का भी पूछा था और आज हम आपसे पूछते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है भाई श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था यही बता दीजिएगा। यानी कि समझ रहे हैं ना। बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जान है बार 3636 पर। सबसे पहले फीता काटा है हमारी प्यारी सी बहना ने सबागुल। करिए सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? लाला संजीदा आप ही मुश्क मानूर को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम अस्सलाम। और करिए भाई आपने अपने अब्बू जावेद अख्तर साहब का वो सॉन्ग जो उन आपके पास आपको पसंद हो लाला के नाम कर दीजिए। मुझे तो उनके सारे गाने पसंद हैं। यानी कि समझ रही है ना आप। अब आप बताएं कौन से जिला है। सलाम के बाद कह रहे हैं भाई कैसे हैं आप? लाला को मेरा सलाम और कह दीजिए कैदा कदम पसर जमा, ये वाला गाना जो है उनके नाम कर दें हिना खान। भाई लाला गाना पर गाने डेडिकेट हो रहे शुरू हुई क्या बात है, और खुद भी आ गए। जान जगह ये हवे भी सबागुल हिना मुश्क मानूर और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है वालेकुम अस्सलाम। और हमारा शहजादा अमीर मेट्रोवेल से भी आ गए हैं, कह रहे थे भाई
1: डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, एने भाई का शो करोड़ों में एक।
0: स्वीट फैमिली को सलाम मुझे अमीन को डेडिकेट कर दीजिएगा।
1: दिलदारियां केड़ा गाना है भाई जन मैंने दस।
0: अच्छा ये डब्बे में डब्बा डब्बे में केक है, है। किसी जमाने ये देखो कितने मासूम लोग होते थे उस दौर के नौजवान, इस तरह के शेर बन रहे होते थे। ये बताओ किसी ने ईद कार्ड वगैरह, मतलब अभी तो जो है वो जाहिर है जब से इंटरनेट का दौर आया है ये तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन कभी खतो किताबत किसी ने की है? खतो किताबत करने वाले लोग मुझे सुन रहे हैं और उसके साथ साथ जिन्होंने ईद कार्ड जो है वो भेजे हों, और उसके अलावा वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है कि ईद से पहले जो है वो बड़े मशहूर होते थे, कार्ड्स ही होते थे बेसिकली, तस्वीरें होती थी वो, फोटो कार्ड्स होते थे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के और ज्यादातर पाकिस्तान में चलते थे इंडियन, वो किसी ने जमा किए हों तो ये बताइएगा जरा जरा। यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इससे भी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। नदीम ब्रो मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, अच्छी बात है आप मेरा गाना नहीं चलाते, ये भी अच्छी बात है, क्या वजह है बताएं प्लीज। सलीम मेमन खारा दर वाले भाई,
1: ए मेमन भाई मेरे को ये बताओ कौन सा गाना, मैं आपको बताता हूँ कि अगर वही वाला गाना है तो मेरे को बताओ,
0: क्योंकि एक ही ऐसा गाना है आपका जो कि मैंने नहीं चलाया, वो था तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, या पता नहीं तू ते मेरी अखियां जी नींद उड़ाई, कौन सा तू तू था उसमें, बदतमीजी वाला गाना था वो, तो बताइए वो कौन सा गाना था, हम आज चलाएंगे आपके लिए ताकि आपकी वो दूर हो जाए, वो समझ रहे हैं ना नाराजगी। नदीम भाई मानूर की तबीयत का कुछ पता चला कि वो कैसी हैं? सबागुल करें मानूर पता नहीं कहाँ गायब है, मैं मिस भी कर रहा हूँ,
1: कहती बाबू
0: बाबू कहती है ना, तो मानूर आ जाओ। और नदीम भाई मुझे तो सॉन्ग का नाम नहीं आता, आप अपनी मर्जी का चला दीजिएगा, सबागुल कह रही है। ओके जी ठीक है। और लाला कहते हैं जिगर सबागुल हिना मुश्ताक मानूर को अपनी पसंद का जावेद अख्तर साहब का गाना सुना दीजिएगा, दो गजल,
1: गजल सुना दे,
0: गाना सुना सकते हैं भाई, आज गजल नहीं सुनाएंगे हम, हाँ पहले बता रहे हैं भाई। ओए होए होए होए मेमन भाई कह रहे हैं हमारे सलीम मेमन बिरयानी वाले,
1: सज्जाद अली का,
0: तो वो तो चलेगा ये भाई, चलेगा भाई, पक्का पक्का चलेगा वो तो, बहुत सारे लोगों को डेडिकेट होगा। और मैसेजेस के जानिब चलते हैं। भाई मैंने आप लोगों से पूछा है, सवाल जेन में रखिएगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। हैं जी के हैं जी। और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जानिब। और हमारे मुश्क आ गए हैं। मुश्क क्या बात है, कहाँ गया मुश्क तुम्हारा मैसेज है भाई। वाह वाह वाह वाह भाई, इनका मैसेज नहीं मिल रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैसेज आया मगर नजर नहीं आ रहा है। और अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, क्या हाल है मेरी प्यारी सी बहना हलीमा पठान आ गई। और एक शेर भेजा, शेर नहीं पढ़ेंगे, मुंह नहीं हो रहा। गुलाम हुसैन साहब वेलकम कहेंगे आपको। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी आ गए हैं और क्या कहते हैं, सलाम के बाद कहते हैं हवा के दोष पर रखे हुए चराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। इन दिनों बंदा खाकसार की तबीयत नासाज है, आपसे दुआ की आजाना दरख्वास्त है, पेशगी शुक्रिया। और हमारे अयूब लाला को, खिताब लाला को, नसीम कुरैशी, समी शेख, इमरान रियाज और मेरे वालिद साहब को उन्होंने सलाम कहा है। और फरमाइश उनकी एज यूजल वही है, सजाद अली या नूरजहान। और भाई हमारे ये अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं, बड़ी मोहब्बत और चाह से सुनते हैं। उर्दू में जो ये मैसेज भेजते हैं कमाल का भेजते हैं। वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम तफसील के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि और हैं भी हमारे बुजुर्गों में से, तो हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए, आमीन। गाना चलाएंगे हम आपके लिए, बेफिक्र हो जाएं, यानी कि समझ रहे ना आप। हाँ अच्छा भाई, साहबजादा साहब आ गए हैं और बगैर कुछ कहे सुने उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। यार साहबजादा ये तो गलत बात है, आदमी कहता है जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है भाई, सबको सलाम कहिएगा, शो सुन रहा हूँ मैं। सवाल का जवाब ये है, इतनी कंजूसी। अनीस साहब भी आ गए हैं और कह रहे हैं नदीम भाई सलाम और तमाम सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम वालेकुम अस्सलाम। और क्या कह रहे हैं, ये कोई और है भाई। और ये हैं जनाब कौन, वालेकुम अस्सलाम लाला संजीदा आपी को मुश्क को मेरा सलाम, हिना खान कह रही हैं। अब हिना खान दो हैं भाई, यार तुम थोड़ा सा नाम चेंज कर लो, हिना खान दोनों हिना खान को बोल रहा हूँ, कोई इलाके शिलाके का नाम लिख दो कोई एक, साथ में पता ही नहीं चलता कौन सी हिना का मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं। और नदीम भाई आपका अखलाक बहुत अच्छा है। अच्छा, और माशाल्लाह यू आर बेस्ट आरजे। और मेरे अच्छे भाई जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना, ये कह रही है सबा गुल। चले इसी बात पर हम आपको लेके जाते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब और जे जे को शामिल करेंगे ब्यूटीफुल ट्रैक एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे यार, इसका मुझे म्यूजिक मजेदार नहीं लग रहा है यार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बस बहुत दूर से चल रहा है। तो जे जगह ये सुनाते हैं आपको।

ब्यूटीफुल जे जे ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। हाँ भाई, अब हमें आंखों में नजर आ रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है? अभी ज्वाइन किया है जीजे के सॉन्ग से अयूब चाचू गुलबानो चाची को बेस्ट विशेष। कोई भी सॉन्ग उनके नाम कर दीजिएगा और सबागुल सिस्टर और अरे भाग्य मैसेज सिस्टर और हिना खान दोनों के लिए भी बेस्ट विशेष। राजीव लिखा भाई, शुगर है मेरा, कोई जानू मानू नहीं वरना मुझे पोस्टे भी पूछ पूछ के करनी पड़ती। वैसे होता भी नाम भी बड़े प्यारे प्यारे से थे, जानू मानू शोना और क्या बोलते हैं बेबी और क्या बोलते हैं आप, ये देखें मैंने तीन चार नाम बता दिए, तो आप किस नाम से पुकारते हैं? जानू मानू शोना बेबी, तो आप इसके अलावा कोई नाम इस्तेमाल करते तो बताइएगा, हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। अच्छा जी, उठ के गुड मॉर्निंग और मिस यू कहना पड़ता और सोने की भी इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ ये बात भी सही है, सारे दिन की रूटीन बनानी पड़ती, सांस भी पूछ कर लेनी पड़ती। हाय वो मेरी पोस्ट पे लड़कों के कमेंट्स चेक करना और स्क्रीनशॉट लेकर पूछना, एक केड़ी मासी दा पुत्र है, कोई दिल देता है तो कोई नाराज हो जाता है, फिर मुझे मनाते हुए उस लड़के को ब्लॉक करना पड़ता है और फिर मैं जो पाबंदियां लगाती ना बच्चों ना पता चल जाता, मैं भी शुक्र करती हूँ वो भी शुक्र करता है, बच गया। ऐसे बड़ा खूबसूरत सा मैसेज है आजकल के दौर के हिसाब से, और कुछ यही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। गुड है भाई मुश्क, ओके टेक जा रही है तुम। और जबरान यूसुफ कह रहे हैं सोने हो सलाम जी, मैंने खत और ईद कार्ड देखे हैं, सिर्फ देखे हैं या उनका इस्तेमाल भी किया है जबरान साहब, और एक गाना पख्तों का संदर इनको चाहिए यार, चलाने को चलाएगा। और नदीम भाई, मैं पहले मैसेज वाली हिना खान हूँ, दूसरी हिना खान नहीं आया आज से, मैंने हिना पठान लिखूंगी, पहचान लीजिएगा। बस ये हो गया ना हिना पठान, देखो ना हिना एक बुलेट प्रूफ तो है, अब तुम हो गई हिना पठान और वो हिना खान, दासियो खान यार जबरदस्त दिल। जन्नत गुल कहते हैं अल्लाह ताला सबा गुल हिना खान और अय्यूब आफरीदी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और सना जान, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आप कैसे हैं? और सब सुनने वालों को सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा खैर खबर के हवाले से मैं बताऊँ भाई, मैं कबूतर तो नहीं हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से पता चलता है कि कौन है और कौन नहीं है। और अमीन भाई कह रहे हैं अच्छा भाई, ये अमीन भाई गाना ढूंढना पड़ेगा, जरा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। और कह रहे हैं कि प्लीज प्ले थैंक यू एने भाई मेट्रोविल वाली मेरी गली वाली हिना खान तो नहीं है? अच्छा वहां पर कोई हिना खान है ये आपको पता है, मतलब सही जा रहे हैं आप, ये वो हो या ना हो मगर आप वही हैं। और कहते हैं सबकुल सिंगा है तासो। और अनीस कह रहे हैं नदीम भाई अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा के जोर से बारिश की हल्की सी फुहार भी हो रही है। अनीस भाई कौन से एरिया में रहते हैं ऐसे आप? कराची के किसी पहाड़ पर तो नहीं रहते या कराची के उस तरफ तो नहीं, पहाड़ के उस तरफ तो नहीं है, वैसे कौन सी जगह जरा बताइएगा। आपने खूबसूरत जायचा खींचा है और इससे तबीयत अजीब रोमांटिक टाइप की हो गई है। वाह वाह वाह, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा के उस जोर में हल्की हल्की सी फुहार, हाय सो रोमांटिक हैं जी ते हैं जी। और जिगर श्रीलंका का पुराना नाम, ओके टैक है
यानी कि उन्होंने सही बता दिया है। और हमारे साहबजादा ने भी वैसे सही बताया है, गो कि उन्होंने मैसेज जो है बहुत मुख्तसर सा किया, सिर्फ जवाब दिया साहबजादा भाई क्या हो गया यार, सब खैरियत है, नाराज हो गया भाई। फर्ज करें आप सो रहे हो, मैं आप पर ठंडा पानी का जग भर कर फेंक दूं, तो आप मेरा शुक्रिया किस तरह अदा करेंगे? सलीम मेमन साहब पूछे। सलीम मेमन भाई बहुत ही आसान सा है, माशाल्लाह से आप शादीशुदा हैं, ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, यही अमल जरा भाभी के साथ करके देखें, तो फिर भाभी जो भी करेंगी ना बस समझ लीजिए वो मैंने किया। यानी कि आपकी बेगम साहबा जो भी करेंगी मेरे साथ, अगर आपने ऐसा किया तो मैं वैसे करूं। भाई फुल टाइम जो है एक्टिव चल रही है हमारी प्यारी सी बहन सबागुल, कह रही है सलाम अमीन भाई, जा खुम ता संगाई, थैंक्स मोश्क। इसी बात पर हम चलते हैं जनाब एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक पता नहीं मेरी बहन सुन रही है या नहीं सुन रही है, नौरीन तौसीफ है ना, उनको डेडिकेट करेंगे, उनका पसंदीदा गाना है एलो फड़ो।

नदीम ब्रो, श्रीलंका का ओल्ड नेम। सलीम मेमन भाई ना, आपने बिल्कुल सही लिखा, सही जवाब दिया। अरे वैसे हैरत हो रही है भाई, अभी तक जिन जिन लोगों ने भी जवाब दिए बिल्कुल दुरुस्त दिए। सलीम अहमद भाई क्या बात है, आप वाला गाना चलाएंगे हम, डोंट वरी डोंट वरी, मुझे याद है। और जनाब नदीम भाई, बुखार है, लंबा मैसेज करना करने का दिल नहीं कर रहा था। हाय बुखार, कौन सा बुखार है भाई, मोहब्बत का बुखार तो नहीं हो। खैर जी, साहबजादा के लिए भी बहुत सारी दुआएं गिरी। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं कि मौसम जो है वो तब्दील हो नहीं रहा, मतलब बारिश हो नहीं रही, तो और जिसकी वजह से काफी वायरस वगैरह जो है वो फैला हुआ है और तबीयतें खराब हो रही हैं, तो लिहाजा अपना बहुत ख्याल रखें। अभी ये बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुआ ये वायरस, लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी तबीयत का, खाने पीने का खसूसी तौर पर ख्याल रखें। जैसा कि हमारे साहबजादा साहब की भी तबीयत सही नहीं है, तो अलीमुद्दीन साहब की भी तबीयत नासाज है, तो आप सबसे गुजारिश है कि साहबजादा के लिए और अलीमुद्दीन के लिए, मेरी प्यारी सी आंटी के लिए, आयशा जी के लिए, हमारे शहाब अंकल के लिए, हमारे अलीमुद्दीन क्या नाम है, नसीम कुरैशी साहब के लिए, जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हमारे लिसनर्स हमें सुनते हैं, उन सब के लिए ढेर सारी दुआएं करें। खैर साहबजादा तो जवान साहब है लेकिन तबीयत इनकी खराब है, तो इन सब के लिए दुआ कीजिएगा जरूर कि अल्लाह ताला FM 100 के तमाम जो सुनने वाले हैं, जो उनमें जो बीमारान हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अमीन आ गए हैं भाई, ये ईद कार्ड कार्ड्स और ईद कार्ड और पता नहीं क्या लिखा हुआ यार, ईद कार्ड्स के चक्कर में अभी तक कमा रहा हूं। काश मेरी जिंदगी ये कार्ड्स वाली ना हो आती तो आज 3-4 बच्चे होते हैं। और जबा गुल को उन्होंने कहा है कि यमस्ता सो खाई खा यमा। अच्छा जी, अब ये पश्तों में चल रही है बातें, और ईद कार्ड के चक्करों में, मतलब ईद कार्ड आपने इस्तेमाल किए हुए हैं, क्या दौर होता था यार वो, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर। ये मतलब आज से तकरीबन ये 2000 से पहले की कहानी है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये हमारी जिंदगियों में इसने भरपूर तरीके से, तो खैर 2005-6 के बाद जो है कदम रखा था, बल्कि 5-6 भी नहीं, तकरीबन समझ लीजिए 2007-8 के बाद इसने भरपूर तरीके से कदम रखा था, और 10 के बाद जो है तबाही मचा दी थी इंटरनेट ने। तो अगर आप 2000 से पहले चले जाएं, जब मोबाइल फोन्स ना होने के बराबर, उनका इस्तेमाल नहीं था, PTCL का ज्यादा इस्तेमाल था, और उसके साथ साथ खतो किताबत का सिलसिला होता था, और जब त्यौहार आते थे, यानी ये हमारे जो त्यौहार हैं मुसलमानों के, उनमें सबसे खूबसूरत त्यौहार जो है वो ईद का है, तो एक शहर से दूसरे शहर बहुत सारे लोगों की टेलीफोन के जरिए भी रसाई नहीं थी, तो क्या करते थे जी, कि खत लिखा करते थे, और वो खत जो है वो पोस्ट होता था, और तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाया जाता था, और वो पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद उसका जवाब लिखते थे, फिर वो जवाब पोस्ट करते थे, वो आता था। यानी कि अब तो मैसेज सेकंड्स में पहुंच जाता है यार, आप व्हाट्सएप पे वो जैसे कोई भी चीज को तहरीर करें और तहरीर करने के बाद आप भेजते हैं, तो बस आपको लिखने में, टाइप करने में जितना वक्त लगता है बस वही लगता है, और ये पहुंच फौरन जाता है। तो उस वक्त इतना कुछ, इतना भी लिखने के लिए जो है वो उसके जवाब का इंतजार करने पर तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे, कभी कभी हफ्तों भी लग जाते थे, और जो लोग बैरूने ममालिक में होते थे उनसे जो खतो किताबत होती थी, तो वो खतो किताबत का जवाब जो है वो
مہینوں میں اس کا جواب آتا تھا کہ آپ نے خط لکھا تو مہینے کے بعد اس کا جواب آیا۔

वेलकम बैक जोड़े, और उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा। मैशअप था जनाब, और ये हमारे लाला को बड़ा पसंद है और ये हमने चला दिया, और आखिरकार था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। संजू आ गई हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नदीम खुशामदीद, आफियत की अनगिनत दुआएं। कैसे मिजाज है? मिजाज हमारे तो बखैर हैं, आपके मिजाज कैसे हैं? इतनी देर लगा दी आने में। कहती है किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि खामोशी को बोलने पे इसलिए फौकियत हासिल है कि बोलना जिस्म का अमल है जबकि खामोशी रूह का। ओए होए होए, कितनी गहरी बात कर दी है भाई, कितनी गहरी बात कर दी है भाई, बहुत बढ़िया। कल का प्रोग्राम बेहतरीन रहा था और ईद कार्ड भेजने का अपना मजा था, बहुत भेजे हैं दोस्तों को, अच्छा लगता था। इस पर कुछ कही है संजू, मैं भी ये मैंने ऐसी बात की थी तो अभी तक मतलब मजेदार किस्म की कोई बात आई नहीं है सामने, जिस पर यानी कि समझ रही है ना आपको चर्चा की जाए। अयूब लाला के लिए आफियत की बहुत सारी दुआएं, सवा गुल, हिना पठान के लिए प्यार। कितनी अजीब बात है, हजारों अच्छाइयों को अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती और एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। दुनिया के निराले दस्तूर हैं भाई। अच्छा, इनकी बात से मुझे एक बात याद आई, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। संजू की यही क्वालिटी है कि इसके मैसेजेस में मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है, अच्छी बात, और वो आपके समातों तक पहुंचाता हूं मैं तो। भाई बात दरअसल ये है कि आज जो है एक मौलाना साहब की कुछ आवाज सुना, उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की बात थी, गो कि वो मैं कई दफा कर चुका हूं, दरगुजर करने के हवाले से बात थी, तो इस पर चर्चा मेरे ख्याल है यार 2 बजे या 2:30 बजे के बाद ही करेंगे। बड़ी मजेदार किस्म की बात है और समझने वाली बात है और दिल को छू जाने वाली बात है, और उम्मीद करता हूं कि आपके भी छुएगी। और जनाब साहबजादा कह रहे हैं नदीम भाई बुखार है, लंबा मैसेज करने का, अच्छा दोबारा मैसेज कर दिया मेरे शहजादे, कोई मसला नहीं है साहबजादा, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी डोंट वरी। और अमीन ये ईद कार्ड्स वाला मैसेज भी हो गया था, मेरा ख्याल है मैं जरा जल्दी चला गया। हाँ अब आगे बढ़ रहे हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेजर साहब आ गए भाई, हमारे मेजर नदीम अजीज साहब मलीज कैंट से, आप सबको सलाम, हमेशा की तरह आज भी फुल एक्टिव हूँ, आप कुछ इखलाक, आप खुश इखलाक, खुश मिजाज, जिंदा दिल इंसान हो, अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। और अमीन यार नदीम हो सके तो मेहंदी हसन का कोई गाना अगर हो जाए। मेजर साहब किसी बातें कर रहे हैं, उस दिन तो चल गया था मुनासिबत से आपने कहा था। मेहंदी साहब का ट्रैक आज के शो में वैसे पीर मंगल वाले दिन चलता है, उसके अलावा जुमेरात वाले दिन उनके ट्रैक्स बहुत चलते हैं, तो आज थोड़ा सा यानी कि समझ रहे हैं ना, कुछ और फरमाइश कर दीजिए वरना हम 2 बजे के बाद सोचेंगे। और नदीम भाई टुडे आई हैव अ सॉन्ग रिक्वेस्ट, ओए होए, प्ले एंड डेडिकेट टू समवन स्पेशल फ्रेंड, और वो हैं थानिया हसन जी, समी सनी मेमन, मेमन ब्रदर्स ब्रदरी एंड ऑल। सॉन्ग टाइटल इज, अबे भाई ढूंढना पड़ेगा ये, अच्छा एक काम करते हैं, FR हैं ये हमारे फरहान भाई, एक बहुत ही जबरदस्त सा बलूची बरावी ट्रैक जो है वो मैंने क्यू शीट में रखा हुआ है। अभी आपने जो कहा है ये भी मेरा ख्याल है मेहर का ही गाना है जो मैं आपको सुनाऊंगा, तो वो वाला ट्रैक डेडिकेट कर देते हैं, और आपने जिस ट्रैक की मुझे रिक्वेस्ट की है ये फिर कभी सही, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ तो चलाएंगे जरूर, डोंट वरी डोंट वरी। और लाला कह रहे हैं गुड जिगर, वाह वाह क्या सॉन्ग है। लाला आप बड़े खामोश खामोश हैं, क्या बात है, खुशी वुशी नहीं है यानी कि समझ रहे हैं ना, या आज बहुत याद आ रही है। और मोहब्बत के बाद अकल ने कहा, मैंने मना किया था ना, दिल बोला हाँ,
مگر آواز نیٹ ورک سے باہر تھی. فرحان بھائی کیا بات ہے بھائی, آپ کے نیٹ ورک بھی اس وقت فل فلیش چل رہا ہے. خیر میں نے ابھی جو بات کی تھی کہ دل سے باتیں کرنا, آئے دل مل کے اسے یاد کریں, اس پر انہوں نے کہا محبت کے بعد عقل نے کہا. میں نے منع کیا تھا نا, دل بولا ہاں مگر آواز نیٹ ورک سے باہر. ہائے ہائے کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اسی بات پر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ادھر ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک جناب ہمارے پیارے سے ایف آر کی جانب سے ہی, یعنی کہ فرحان بھائی کی جانب سے ہی, جن کو ڈیڈیکیٹ ہو رہا ہے ان کے میں نام بتاؤں گا. میں پہلے گانا ڈھونڈ لوں, گانا کہاں غائب ہو گیا. مل گیا جناب گانا. ہاں جی یہ مدثر بلوچ صاحب کا گانا ہے, مہر کا نہیں ہے. اور یہ ٹریک جو ہے ہم تانیا حسن جی, سمیع بھائی اور سلیم میمن برادری اور آل جتنے بھی سننے والے ہمارے بلوچ بہن بھائی جتنے بھی خصوصی طور پر سن رہے ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. بٹ ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہم وہ بات بعد میں بتائیں گے, فی الحال یہ ٹریک سنیں. بیوٹیفل. اس ٹریک کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا مگر ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت میلو سا دل کو چھو جانے والا ٹریک ہے یہ.

हाय हाय ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अरे भाई हमारे लाला कहते हैं जिगर कसम से बहुत खुश हूँ खुमारियम कना दासियो कना और कहते हैं जने ओके आप प्ले कर दीजिए बरावी सॉन्ग क्योंकि मैं बरावी हूँ समझता हूँ। थैंक यू सो मच एफ आर कह रहे हैं। और फरहान भाई बताइएगा कि इसकी शायरी में क्या कहा गया है द बरसात जंबरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना पता नहीं क्यों समझ नहीं आता यार। जो लोग अच्छा आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ बड़ी जबरदस्त सी और वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जनरेशंस है ठीक है जी। अब रिलेटेड टू जनरेशन इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है इंसान सोचता भी है ना, तो इसको मैं बड़ी तफसील के साथ आप लोगों की समातों तक पहुंचाता हूं और आपको पता चलेगा ये बात बताने की का एक मकसद है क्योंकि फिर मैं किसी न किसी जनरेशन को मुखातिब करके उनके लिए कुछ कहूंगा। हर जनरेशन का अपना है ठीक है जी। तो जनरेशन जो है जो 1946 से 1964 तक जो जनरेशन पैदा हुई यानी 1946 से 1964 से लेकर 1964 तक वो कहलाती है जनाब जनरेशन कौन सी, ये आपने बताना है। लेकिन इसके बाद की जनरेशन के हवाले से मैं आपको बताऊंगा 1965 से 1980 तक जो लोग पैदा हुए हैं 1965 से लेकर 1980 तक उनको नाम दिया गया है जनरेशन एक्स के नाम से, जेन एक्स उनको कहते हैं। और जो 81 से लेकर 96 तक 1981 से लेकर 1996 तक पैदा हुए हैं उनको जनरेशन वाई कहते हैं, जेन वाई। और जो 1997 से लेकर 2012 तक पैदा हुए हैं 1997 से लेकर जिनकी पैदाइश 2012 के दरमियान में है वो जेन जी कहलाते हैं, जनरेशन जी। अब देखें कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादातर जो सुनने वाले हैं वो जेन जी हैं 1997 से 1912 के या 81 से 96 के। और उसके अलावा जो 2013 से लेकर और 2024 तक जो इन सालों में जो पैदा हुए हैं वो कहलाते हैं जनरेशन अल्फा, जेन अल्फा कहते हैं उनको। और जो 2025 से के बाद से पैदा हुए हैं जो बच्चे हैं अभी, तो ये बच्चे जो हैं ये जनरेशन बीटा कहलाते हैं, अल्फा और बीटा ठीक है जी, जेन बीटा। तो अब आ जाएं जनाब के जो मैं बात करना चाह रहा हूं ये खतो किताबत वाली जो बात है, ये मिलीनियल्स या जनरेशन वाई जो है जो 1981 से 1996 में पैदा हुए वो या 1965 से 1980 में जिनकी पैदाइश हुई वो जेन एक्स हैं, जनरेशन एक्स। तो इनका ताल्लुक जो है ये बड़ा मजेदार किस्म का है, ये बड़े मैं इनको मिलीनियम मैं इनको गोल्डन जनरेशन भी कहता हूं, जो जेन एक्स से रिलेटेड जो जिनकी उम्र जो है वो 1965 से 1980 के दरमियान में जो लोग पैदा हुए हैं, मैं वैसे तो वो जेन एक्स हैं लेकिन मैं उनको गोल्डन जनरेशन कहता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में वो तब्दीलियां और वो कारनामे देखे हैं जो कि ना उनसे पहले वालों ने देखे हैं और जो ना उनके बाद वालों ने देखे हैं। मिसाल के तौर पर जो जेंजीज हैं उन्होंने जनरेशन जी यानी कि जो 1997 से 2012 में पैदा हुए हैं, इस जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने टेप रिकॉर्डर नहीं देखा हुआ, उन्होंने टेलीविजन जो ट्यूब वाले टेलीविजन थे वो नहीं देखे हुए, उन्होंने जो है वो रिकॉर्डर्स नहीं देखे हुए, उन्होंने एंटीनाज नहीं देखे हुए। लेकिन जनरेशन एक्स
जो जिनको मैं गोल्डन जनरेशन कहता हूं, उन्होंने ये चीज देखी हुई है, ठीक है ना। इसी तरह उनसे पहले वाले जो है उन्होंने जो चीज नहीं देखी, लाइक उन्होंने जो 1946 या से लेकर 1964 तक जो जनरेशन है, या उससे भी पहले के जो लोग हैं, उन्होंने यूएसबी नहीं देखी है, उन्होंने सीडी नहीं देखी है, उन्होंने कंप्यूटर्स नहीं देखे, उन्होंने लैपटॉप्स नहीं देखे, या उनको वहमो गुमान में भी नहीं था। मगर जनरेशन एक्स यानी कि जेन एक्स वालों ने ये तमाम चीजें देखी हुई हैं, तो ये गोल्डन जनरेशन है। तो ये वो जनरेशन है कि आज मैं खतो किताबत के हवाले से बात कर रहा हूं, तो वो अगर जनरेशन एक्स के लोग मुझे सुन रहे हैं जिनकी पैदाइश 1965 से लेकर 1980 के दरमियान में हुई है, तो अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिन्होंने खतो किताबत अपने हाथों से की हुई है, जिन्होंने ईद कार्ड बनाए हुए हैं, जिन्होंने लेटर्स पोस्ट किए हुए हैं। लेकिन जेंजीज को पता ही नहीं है, जनरेशन अल्फा को तो बात ही छोड़ दें, जेंजीज को इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि भाई इस तरह का भी होता था। अरे भाई ना करो यार, ऐसे भी लोग थे दुनिया में, हैं जी ते हैं जी। और नो डाउट जेंजीज बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत फास्ट हैं जेनेक्स से, मगर जो एक्सपीरियंस जेनेक्स के पास है वो जेंजीज के पास नहीं है। बट ये बात फैक्ट है कि द मोस्ट टैलेंटेड जनरेशन जो है वो फिलहाल जेंजीज है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की समातों तक पहुंचा दूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। ये संजू के मैसेज की जानिब बढ़ते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, ईद के हवाले से इन्होंने कार्ड्स के हवाले से बात की है। जब कार्ड्स का खूबसूरत जमाना था तो दोस्तों को ईद कार्ड में ईद की मुबारक लिखने के साथ साथ ईद की मुनासिबत के साथ साथ कुछ अशार भी लिखे जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अभी एक शेर आया था जिससे मुझे याद आया, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। ईद आई है बड़ी धूमधाम से, शाजिया उछल रही है सवैयों के नाम से, ये लिखा होता था। शाजिया को भेजा जा रहा है कार्ड और उसमें लिखा हुआ ईद आई है बड़ी धूमधाम से, शाजिया उछल रही है सवैयों के नाम से। लोग कहते हैं ईद कार्ड जिसे ये रिवायत है इस जमाने की एक दस्तक है, उनके जहनों पर जिनको आदत है भूल जाने की। ईद आई तुम ना आए, क्या मजा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। इस ईद पर जो मिल ना सके हम तो क्या हुआ, जज्बों में हो खुलूस तो ईदें हजार हैं। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, ये जेंजीज बड़े एंजॉय कर रहे होंगे, और सॉरी जेनरेशन एक्स वाले, जेन एक्स वाले। मजे की बात, लड़ाई भी तो होती थी कि फला दोस्त ने मुझे कार्ड नहीं दिया और मैंने उसको दिया, बहुत खूबसूरत वक्त था। वाह वाह, बचपन की ईद और वो प्यारे प्यारे कार्ड्स एक अलग ही खुशबू रखते थे। हम बड़े शौक से रंग बरंगे पेपर्स, स्टिकर्स और ग्लिटर्स से उन्हें सजाते थे। फिर आती थी हमारी खास शायरी जो सिर्फ हमें ही समझ आती थी, और हमें लगता था कि कमाल लिखा है हमने। दिल ही दिल में खुद को मिर्जा गालिब समझने लगते थे, न काफिए का पता, न वजन का, न ख्याल, बस जज्बात फुल ऑन। हर कार्ड में सच्ची मोहब्बत और मासूमियत भरी होती थी, आज के फॉरवर्ड मैसेज में वो मजा कहाँ, वो छोटे छोटे कार्ड्स ही असल खुशी थे। क्या बात है संजू, ओके टेक। जेनेक्स जितने भी हैं वो आपके ये लिखी हुई तहरीर को जो मैं पढ़ रहा हूँ सुनने के बाद महसूस हो रहे होंगे। बहुत इंफॉर्मेशन जनरेशन के हवाले से मैंने बहुत खतूत लिखे हैं, अखबारात में छोटी सी तहरीर भेज कर इंतजार रहता था कि कब छपेगा, बचपन से लिखने का शौक था। अच्छा, अब क्योंकि इंटरनेट था, ये जेनेक्स के हवाले से मैं आप बात करा रहा हूँ, ये जेंजीज जितने भी हैं वो सुने, नौजवान सुने इन चीजों को, मजा आएगा उनको कि कैसे कैसे क्या क्या तफरीह होती थी जो है जेनेक्स की। और इस हवाले से मैं आपको बताता हूं
कि उस जमाने में क्योंकि इंटरनेट नहीं होता था तो तफरी जो होती थी वो पढ़ने में बड़ी होती थी। मुख्तलिफ किताबें जो हैं, कहानियां जो हैं, वो उस वक्त के नौजवान और लड़कपन में जो होते थे, टीनेजर्स जो होते थे, उनकी जो सबसे बड़ी जिसको कहते हैं एंटरटेनमेंट जो होती थी वो ये होती थी कि वो जो नॉवेल्स पढ़ते थे, जैसे इश्तियाक अहमद के नॉवेल्स होते थे और उसके अलावा इमरान सीरीज होती थी। ये एक इतने मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान में कहानियां की किताबें होती थी जो हर महीने इसकी अशात चार चार स्टोरीज के ऊपर होती थी और हर हफ्ते एक स्टोरी जो है वो आती थी और जो उस दौर के जो नौजवान है वो उसको खरीदते थे। लाइब्रेरीज होती थी वहां पर, किराए पर भी मिलती थी ये किताबें और उनको पढ़ा जाता था। उसके अलावा अखबार घर में आते थे क्योंकि सिर्फ एक ही चैनल होता था पीटीवी, जिस पर रात को सिर्फ 9 बजे खबरनामा आता था आधे घंटे का, तो उसमें दुनिया की थोड़ी बहुत खबरें जो मिलती थी, मगर रोजमर्रा की जो खबरें होती थी उसके लिए अखबार जो है वो घर में आता था। और अखबार पढ़ के, अखबार में खबरों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी एक पेज होता था जिसमें तस्वीरें छपी होती थी। फिर उसके अलावा एक छोटे छोटे से कॉलम्स भी आते थे जिसमें आप अपनी तहरीर भी भेजते थे, जिसका जिक्र किया संजू ने कि तहरीर भेजती थी अखबार में और उसका इंतजार रहता था। और वो छोटी सी तहरीर जब अखबार में छपकर आती थी तो उस वक्त ऐसा लगता था कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप जीत लिया हमने और हमारी तहरीर जो है वो अखबार में आ गई। और दोस्त, सहेलियां, रिश्तेदार, अरे तुम्हारी तहरीर आई है, तुम्हारा नाम लिखा हुआ था अखबार में, अरे यार क्या बात है यार, जबरदस्त। तो अपने आप में खामखा का एक गुरूर आ जाता था और वो एक बड़ा मजेदार किस्म का समा होता था। उसके अलावा एक बहुत ही अखबार के साथ साथ महीने में एक आता था अखबार जहां, उसमें भी कहानियां होती थी और खसूसी तौर पर जो बहुत ही पॉपुलर कहानी होती थी वो थी तीन औरतें और तीन कहानियां। ये आज जो है वो जेनेक्स जो है वो बड़े इंटरटेन कर रहे होंगे और ये बातें सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ रही होगी और उनको अपनी पुरानी यादें भी जो है उनकी शायद ताजा हो रही हों। हाँ, अलबत्ता जो है ये जो नई जनरेशन है वो मेरी इन बातों से हो सकता है महसूस ना हो रही हो, तो क्यों ना उनको महसूस किया जाए। और उनको महसूस करने के लिए हम चलाते हैं गाना। तो अभी जो गाना हम चला रहा हूं ये ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं मुश्क को, क्योंकि मुश्क अचानक हो गई है खामोश। ताहा जी का एक बहुत प्यारा सा ट्रैक है, वो हम मुश्क को डेडिकेट करते हैं और समी को डेडिकेट करते हैं। एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। और जनाब नौरीन मेरी प्यारी सी बहने कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज है, ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए। और अब नाम भी बता देते हैं आपको, उन्होंने मेरा ख्याल है मेरी बहन शो सुन रही है और कह रही है श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था, बिल्कुल सही फरमाया और तकरीबन माशाल्लाह से तमाम लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया। तबीयत ठीक नहीं है, सुबह 6 बजे लाहौर जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर व आफियत के मामलात रखे। मेरे तमाम प्यारे प्यारे से लिसनर से भी दुआ की दरख्वास्त है। मेरी प्यारी सी बहना अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, दिल से आपके लिए दुआ है। और तमाम जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि जरूरी नहीं है कि हाथ उठाए जाए, दुआ जब आंखें बंद करके दिल से की जाए तो अल्लाह ताला जरूर सुनता है। तो आप सिर्फ नाम अपने दिल में पुकार लीजिए और दुआ कर दीजिए, क्या पता किसी की दुआ लग जाए और अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ का नाम लीजिए, हमारे प्यारे से साहबजादा का नाम लीजिए, अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब का नाम लीजिए और मेरी प्यारी सी आंटी का नाम भी जरूर लीजिए। बहुत मेहरबानी आप सबकी अगर किसी ने दुआ की है। मोश्का आ गई हैं, करिए सुन रही हूँ, हैंडसम, नींद बहुत आ रही है, दो दिन से ठीक से सोई नहीं हूँ ना साथ। और तुम अपनी मसरूफियात में मुझसे बेखबर क्यों हो जाते हो, क्या तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया मेरी मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत है। हाय हाय, हैंडसम सॉन्ग के लिए थैंक्स। अच्छा ये जो तुमने नाम दिया है ना, मतलब एक अच्छा नाम है हैंडसम, हैंडसम का मतलब पता है। और आपको एक और बात बताऊं, ये भी आम बात नहीं पता, स्लैंग जो है इंग्लिश और स्लैंग वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं, तो किसी दौर में जो है ना हैंडसम वर्ड जो है इंग्लिश का ये यूज किया जाता था शुजात से भरे हुए मर्द हजरात के लिए और ये स्पेशली ओनली फॉर मैंस ये यूज किया जाता है। ये जितने भी हम कहते हैं हाय यार कितना खूबसूरत लग रहा है, मर्द के हवाले से हाय हाय कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, कितना डैशिंग है, या कितना, ये बहुत सारे डिफरेंट से वर्ड्स हैं। तो मर्द के लिए ये यूज नहीं होते, ये मतलब स्पेशली जो है हैंडसम है। हाय हैंडसम हाउ आर यू, थैंक यू मुश्क लाला क्या क्या है, अरे लाला माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे से कहते हैं जिगर। एक लड़का अपनी मौशूक की सोच में बैठा था, बोला मैं उसे देखता हूं तो मुझे कुछ हो जाता है, बताएं मैं क्या करूं। अचानक पीछे से एक चमाट आता है, अब्बा बोलते हैं आओ मैं बताता हूं क्या करूं। और एक और इनका बड़ा जबरदस्त सा मैसेज है, वो अभी हम थोड़ी देर में शामिल करते हैं। संजू क्या कहती हैं, प्यारी बहना नौरीन बहना के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको जल्द शफायाब करे, आमीन सुमामीन। और उनकी तमाम फैमिली के लिए जो और उन तमाम फैमिली के लिए जो बीमार हैं दुआएं हैं, यानी कि हमारी FM 100 की फैमिली। और हलीमा पठान मेरी प्यारी सी बहना कह रही अख्तर भाई क्या हाल है, आजकल तुम शेर क्यों भेज रही हो। चलो हम अपनी प्यारी सी बहना का ये पढ़ देते हैं, सेल्फियों की बजाय लफ्जों पर फिल्टर लगाएं, बोलते वक्त इतना जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू में लफ्ज कितने हैं और तीर कितने हैं। हाय लज्जी, अरे ये शेर तो नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चले भाई इसी बात पर हम आपको एक ट्रैक की जानिब लेके जा रहे हैं और ये ट्रैक सबा गुल और हीना की जानिब से लाला आपको डेडिकेट कर रहे हैं। जावेद अख्तर साहब की आवाज की फरमाइश हुई थी तो उनका एक अदद गाना है पख्तू संदरा दीजिए दास्यो काना।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दे जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुनियो। स्लीपलेस नाइट में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक और ये अल्ला गुल्ला जारी और सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। भाई हमारे प्यारे से लाला ने कहा है कि जिगर इंसान चार तरह के होते हैं। इंसान चार तरह के होते हैं? अच्छा भाई, पहला ऐसा होता है कि एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है। वाह वाह वाह, एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, वो आलिम है, उसे सीखो। वाह वाह वाह। और दूसरा, एक शख्स नहीं जानता लेकिन जानता है कि वो नहीं जानता। एक शख्स ये बात जानता है कि वो नहीं जानता, तो वो तालिबे इल्म है, उसे सिखाओ। तीसरा शख्स वो है जो जानता तो है लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो जानता है। वाह वाह, तो वो सोया हुआ है, उसे जगाओ कि भाई तू जानता है ये बात, समझ के तू जानता है, जाग जा जाग जा। और चौथा इंसान जो है ना, वो बड़ा जबरदस्त है भाई, पूरा जमाना ऐसे लोगों से भरा हुआ है। पहले शख्स के बारे में जो इन्होंने बताया है, अब मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, पहले चौथे शख्स के बारे में बताऊं कि ये एक शख्स नहीं जानता और ये भी जानता है कि वो नहीं जानता, वो जाहिल है, उससे बचो। आ जाते हैं पहले शख्स की जानिब। चार तरह के इंसान होते हैं। पहला जो इंसान है वो आलिम है, क्योंकि आलिम जो है वो ये बात जानता है कि वो जानता है, तो वो आलिम है।

वेलकम बैक कहेंगे तेरे बिना जिया नहीं जाए। क्या मूड बना दिया मैंने आप लोग का है ना भाई। अच्छा रात का पहर ही ऐसा है, जाहिर है तकरीबन 2:45 हो रहे हैं और इस वक्त थोड़ा सा सुकून भी चाहिए होता है, तो थोड़े से मेलो से ट्रैक्स मैंने शुरू कर दिए और उम्मीद करता हूं कि इस लम्हे रात की तन्हाई में बहुत से हमारे ऐसे लिसनर हैं जो खामोशी के साथ सुन रहे होंगे, सुकून के साथ सुन रहे होंगे, कुछ हंस भी रहे होंगे, तफरी भी कर रहे होंगे, बातों को महसूस भी कर रहे होंगे, कुछ उकता भी रहे होंगे। भाई क्या बोले जा रहा है भाई यार, तो गाना ही सुन लो यार, अच्छे गाने लगा रहा है बस, ऐसा भी होता है। खैर जी हमारे इल्मुद्दीन साहब उनका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस शरी लबो लहजे में मुझे बंदा नाचीज को मैसेज रीड किया। अरे तहे दिल से आपका मशकूर हूँ, दिल से दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए। आपने सवाल का जवाब भी दुरुस्त दिया इल्मुद्दीन साहब, और यकीन मानिए कि आपके लिए हकीकत में बता रहा हूँ कि दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाए। आपने बताया आप हमारी फैमिली का हिस्सा है यार। और संजू कह रही है कि आपने सही तजिया किया है, शुक्रन, जरा नवाजी उसने समात है आपकी जनाब। अच्छा वक्त क्योंकि बड़ा महदूद सा रह गया है तो एक और गाने की जानिब आपको लेकर जा रहा हूं, बड़ा अच्छा सा गाना है और उसके बाद जो है एक चर्चा करेंगे और फिर एक और गाना आपको सुनाएंगे। मुझे ये बड़ा पसंद है और फहीम अब्दुल्ला का और जुनैद अहमद का आपने सुना भी था, सुना चुका हूं आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूं कि आपको फिर पसंद आएगा। हेलो फटो

वेलकम बैक आएंगे ऐसे लैला मजनू किसी सपने में मिले थे ब्यूटीफुल एंड आई होप यू लाइक इट। अच्छा जनाब एक मैसेज पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम एक चर्चा की जानिब जाएंगे। एक छोटी सी बात आप लोगों की समातों तक पहुंचानी है। अयूब लाला कह रहे हैं कि संजू सिस्टर जिंदगी अगर बिल्कुल सीरियस से ले ली जाए तो थोड़ी मुश्किल होती है। जिंदगी का मतलब खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। कभी हंसना कभी रोना यही जिंदगी है। हंसना है संजू सिस्टर, कभी इस तरफ भी आओ, तवज्जो दो, सीरियस अंदाज से जरा निकलो। अच्छा इनका जो अंदाज है ना वो कुछ ये कह रहा है कि जिंदगी जो है वो हर एक के साथ जो है जिंदगी के साथ नशेबो फराज हैं। लोगों को ज्यादातर मैं इनकी बात से हटकर संजू आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक आम सी बात कह रहा हूं मैं कि हम जिंदगी को जो है ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी जिंदगी को। जो इंसान जो है अपनी तरफ तवज्जो देता है तो उसको हम नाम क्या दे देते हैं जी, सेल्फिश है, अपनी जात से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो आप ये बताइए कि हम अपनी जात से कितनी मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल ही नहीं करते। जितनी करनी चाहिए अपनी जात से मोहब्बत, ये हर एक इंसान के लिए मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या बच्चा। बच्चे को तो खैर इस चीज का नहीं है, जब शऊर आ जाता है उसके बाद की बात कर रहा हूं। हम अपनी जिंदगी पर कितनी तवज्जो देते हैं? लड़कियां जो हैं, लड़कपन गुजर गया उसके बाद शादी हो गई उसके बाद वो सिर्फ ऐसे कामों में जुड़ जाती है, घरदारी में जुड़ जाती है, शौहर का ख्याल रखना, ससुराल का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको जिम्मेदारियां और भी होती हैं कि वो ऑफिस जा रही हैं, ऑफिस से वापस आ रही हैं। इसी तरह मर्द हजरात का भी सिलसिला कार है। तो इस कश्मकश में, इन तमाम चीजों में हम कहां हैं? हमारी अपनी जिंदगी क्या है? जो इंसान अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देता है, थोड़ा सा बनता है, संवरता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उसको बोलते हैं यार ये बड़ा खुद खुश मिजाज किस्म का या खुश मिजाज किस्म की खातून या मर्द है, बड़ा बन ठन के चलता है भाई। तो ये जो दुनिया है ना, ये इंसान को किसी हाल में भी खुश नहीं दे सकती। आप पर कमेंट्स जरूर करेगी कुछ भी हो जाए। तो लिहाजा ये जिंदगी में जो नशेबो फराज हैं, ये अगर हम अपने आप को उसी कैफियत में रख लें ना जिस कैफियत में मेरा दिल अभी है। मिसाल के तौर पर मेरा दिल बड़ा उदास है, बड़ा परेशान है। अब मैं क्या करूं अपनी उदासी और परेशानी के लिए? उसका हल ये तलाश करूं कि यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा है यार कुछ करने को, यार कोई सैड सा गाना सुनता हूं। अब मैं क्या किया, सैड सा गाना सुन रहा हूं तो मैं उसी कैफियत में उसी माहौल में और डूब गया। उसके बाद फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और मैं सोचने लग गया, तो मैं उसी कैफियत से बाहर निकल ही नहीं सकता। ना कि मैं उस कैफियत से बाहर उस वक्त निकलूंगा जब मैं अपने माहौल को बदलूंगा, और माहौल बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर है उस कैफियत से बाहर आना पड़ेगा। कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, उस वक्त कैफियत ऐसी है कि बुरा लग रहा है, बैठ जाओ भाई सुनो क्या हो रहा है। कोई तेज गाना चल रहा है, मिसाल के तौर पर मैंने सीरियस गाने चलाना शुरू कर दिया, आदमी उसी कैफियत का शिकार हो जाता है। कोई तेज चल रहे हैं तो लोग उस कैफियत में ही आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से रखना चाहिए कि ढालना चाहिए, उस कैफियत से हमें बाहर निकलना चाहिए जिस भी कैफियत में हम मुब्तला हैं। तो एक दो बात ये थी, ये इसकी थोड़ी सी चर्चा की इन्होंने अपने तौर पर अपनी प्यारी सी बहन को ये बात कही। मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए उस हवाले से कुछ तज्जिया मेरा वो आपके सामने आ गया। अच्छा, मेरे जैसे लोग आसानी से नहीं मिलते। मुर्शद दुआएं करनी पड़ती हैं। सलीम मेमन साहब बड़ी देर बाद आए हैं, बिल्कुल आखिरी मैसेज आपका ही पड़ा है। और आखिर में एक छोटी सी चर्चा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और वो ये थी कि आज
میرے دل کی پتہ نہیں یہ بڑی قریب بات ہے، میں کئی دفعہ اپنے شو میں بھی یہ بات کر چکا ہوں، درگزر کے حوالے سے میں بات کروں تو آج جمعے کے خطبے میں مولانا صاحب کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے اور دینی طور پر انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت طریقے سے ترجمانی کی کہ رشتوں کو جوڑے، ایک دوسرے کو معاف کرنا جو ہے وہ سیکھیں۔ بے تحاشا آپ کی زندگی میں ایسے بے تحاشا لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں ایسے رشتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کے ٹوٹ چکے ہوں گے، کچھ لوگوں کی دوریاں بہت بڑھ گئی ہوں گی، چاہے وہ آپ کے چچا کا رشتہ ہے، تایا کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے۔ رشتوں کی جو قدر ہے نا وہ ہم آہستہ آہستہ کھوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ صحیح ہیں تو بھی معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک قدم آگے بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، قدم آگے بڑھائیے۔ جو آپ کے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیے، جو جن سے آپ روٹھے ہوئے ہیں آپ خود ہی مان جائیے۔ مولانا صاحب نے اس کے حوالے سے جو اجر کا ایک تفصیل بتائی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ یقین مانیں کہ اس وقت وہ میں پروگرام کی کچھ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی باتوں کے لیے ایک محفل ہوتی ہے جس میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں اس کو اپنے پروگرام کے حساب سے ہی مختصرا ایک سمجھانے کی بس کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں آپ چھوٹے نہیں ہوتے، معافی مانگنے میں یا قدم آگے بڑھانے میں آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوگا، اللہ کی نظر میں بہت بلند ہوگا۔ تو اس نوٹ کے ساتھ ہی میں چاہوں گا آپ لوگوں سے اجازت، انشاءاللہ تعالی ملاقات اب آپ لوگوں سے ہوگی اتوار والے دن اور دوپہر 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک۔ جاتے جاتے ایک بہت خوبصورت سا ٹریک جو ہے، نیا ٹریک ہے، وہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ شہریار کا یہ گانا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ یہ ٹریک میں اپنی جانب سے آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔